0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए।

0: ये है पाकिस्तान की आवाज UCP रेडियो FM 92.6।
1: एक नया अंदाज,
2: एक नई सोच,
1: एक नई पहचान,
2: एक नई लगन।
1: UCP में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
2: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
1: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहसों तकरार हो आने वाले वक्त की,

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: जी तो सामिन, हम वापस आ चुके हैं। उम्मीद है कि बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा अभी तक। सर, अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे प्रेसिडेंशियल निज़ाम और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे। सर, अभी मौजूदा वक्त में अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सदर के पास जमहूरी निज़ाम में रहते हुए क्या अख्तियारात हैं?
4: देखें, 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सदर के पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं, यानी कि वो एक टाइटलर हेड के तौर पे है। जिस तरह से ब्रिटेन में ऐसा हुआ है कि पार्लियामेंट के वजूद के बाद जो है वो जो क्वीन है या किंग है उसके पास नॉमिनल पावर्स रह गई हैं। जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर पार्लियामेंट्स जो हैं वो डिसीजंस लेती होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में हुआ कि जितने भी अहम मामलात हैं उनके ऊपर जो है वो हमेशा बिल जो है वो इनिशिएट होता है पार्लियामेंट से, वो फिर साइन होता है, उस पर डिबेट होती है पार्लियामेंट में, वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो दोनों हाउसेस से उस बिल को मंजूर करते हैं, फिर वो बिल जो है वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है फाइनल सिग्नेचर के लिए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सदर जो हैं वो उसमें कुछ तब्दीली जो है वो रिकमेंड करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो बिल को उसी तरह से मंजूर कर देते हैं। तो एक उनके पास सबसे बड़ा इख्तियार ये है कि जब बिल जो है वो लॉ बनने लगता है तो उस प्रोसेस की जो कंप्लीशन है वो विद द सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होती है। लेकिन इसमें भी ऐसा हो सकता है कि अगर दो रिपीटेशंस के बाद बिल जो है वो सदर पाकिस्तान से अप्रूव नहीं भी होता और हाउस उसको दूसरी तीसरी दफ़ा जो है वो अप्रूव कर देता है तो वो बिल लॉ बन जाता है। दिस शोज़ कि आपकी जो पार्लियामेंट है इवन वो लॉ बना सकती है अगर सदर का उस पर सिग्नेचर भी ना। उसके अलावा सदर के पास जो इख्तियारात होते हैं वो एक सबसे अहम अख्तियार है जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता होता है। ऑर्डिनेंस जो है वो एक एमरजेंसी लॉ होता है जो कि उस वक्त बनाया जाता है जब पार्लियामेंट एंड सेशन नहीं होती और किसी अहम मामले के ऊपर आपको लॉ मेकिंग की ज़रूरत हो, तो वो ऑर्डिनेंस जो है वो थोड़े अरसे के लिए जो है वो लागू होता है। उसके बाद अगर उसको पार्लियामेंट रिकग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करेगी तो वो लॉ नहीं बन सकेगा। तो प्रेसिडेंट के पास दूसरा सबसे बड़ा अख्तियार ये है कि वो इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी जो है वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जो कि उस वक्त के लिए लागू होता है। जो तीसरा सबसे बड़ा अहम जो अब उसके पास इख्तियार होता है वो है पार्डन या रिप्रीव का, यानी कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसको कोर्ट्स की तरफ से सज़ा हुई हो वो सज़ा जो है वो डेथ पेनल्टी तक भी हो सकती है, उसकी एक एप्लीकेशन जो है वो सदर पाकिस्तान को अगर फॉरवर्ड की जाए और उसमें वो माफ़ी की दरख्वास्त करे सदर को, तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो उसको माफ़ी दे देता होता है। इसको पार्डन या रिप्रीव कहा जाता है, यानी कि आपके शहरियों में से कोई एक शहरी जो है अगर वो किसी गुनाह का किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो उस जुर्म में जो है वो जो उसे सज़ा हुई है उसकी माफ़ी देना जो है वो सदर के इख्तियार। इसके अलावा ये है कि जब खारजा अमूर डिसाइड हो रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें भी सदर का किरदार होता है। जब सेरेमनीज हो रही होती हैं या हेड ऑफ स्टेट आपको विजिट कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपने उन्हें वेलकम करना होता है, तो ये सेरेमोनियल्स जो हैं वो कुछ रोल्स होते हैं जो सदर को परफॉर्म करने होते हैं।
3: सर, अभी कुछ देर पहले आपने बात की थी कि जमहूरियत निज़ाम में क्रैक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। सर, वो किन किन इंस्टीट्यूशन की आप बात कर रहे थे कि जिनका रोल बहुत अहम है?
4: देखें, दो तरह के इदारे होते हैं किसी भी एक रियासत में या जमहूरियत में। वो दो इदारे जो हैं एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी काम कर रहे होते हैं पैरेलल, जो कि उतने ही मजबूत होते हैं जितना के सरकारी इदारे होते हैं। क्योंकि हमारा फोकस जो है वो रियासत के ऊपर है तो हम सरकारी इदारों की बात कर लेते हैं। हकूमती इदारे जो हैं वो थ्योरेटिकली तो जो है वो तीन इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, जो कि एक रियासत को चलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज़ टू फॉर्म लॉज, वो कवानीन बनाते हैं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए आपके पास एक दूसरा इदारा मौजूद है जिसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा होता है, जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव जो है उसको दो तरह से डिफाइन किया जाता है, एक ब्रॉडर सेंस में और एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में फ्रॉम लाइक प्राइम मिनिस्टर टू पटवारी जो है वो आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है। नैरो सेंस में ये किया जाता है कि इसमें डिस्टिंक्शन की गई है कि एग्जीक्यूटिव मेंबर और होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर और होते हैं। एग्जीक्यूटिव स्टाफ वो होता है जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वो होता है जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। सो बुनियादी जिम्मेदारी जो है यहाँ पे वो लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले इदारों पे आती है जिन्होंने इन्फोर्स करना है। लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, उसके अलावा मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि काम कर रहे होते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद द सिविल मैटर तो आपको लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स जैसे इदारों से सामना करना पड़ेगा, और अगर तो आप जो हैं वो किसी क्रिमिनल उससे डील कर रहे हैं तो आपको पुलिस और इस जैसे इदारों, दे ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। जो तीसरा और सबसे अहम इदारा है जमहूरी मुल्क में वो है जुडिशरी का, जिसे अदलिया कहा जाता है। इसका बुनियादी काम कानून को नाफिज होने के प्रोसेस के दौरान जो इंसाफ है उसके तकाजों को मद्देनज़र रखना है, और साथ ही साथ जो है वो कानून की इंटरप्रटेशन करना है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि कवानीन जो हैं वो बड़े एम्बिगुअस होते हैं, जब वो बन के आते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन नहीं होती, जिसमें जो जुडिशरी है उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये बनती है जजेस अपनी बसात और अपनी प्रूडेंस के मुताबिक जो है वो इंटरप्रटेशन करते हैं लॉ की, और उसको किसी स्पेसिफिक केस के ऊपर लागू करते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कानून मौजूद ही नहीं होता, तो उसमें जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए वो इंसाफ मुहैया करते हैं। तो हकूमती इदारों की अगर बात की जाए तो यही तीन इदारे हैं जो कि एक रियासत को चलाने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं। आज की जो मॉडर्न स्टेट है उसमें ये कहा जाता है कि एक चौथा इदारा भी एस्टेब्लिश हो गया है जिस पे उतनी ही जिम्मेदारी आयद है जितना इन तीन सरकारी इदारों पे है, और वो मीडिया है। मीडिया को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है एक जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए जितना ये तीनों इदारे हैं।
3: जी सर, बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सर, हारजा पॉलिसी, एक जमहूरी रियासत को, एक डेमोक्रेटिक कंट्री को अपनी हारजा पॉलिसी कैसी बनानी चाहिए ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी अपना रिलेशन ठीक बना सके और अपनी अवाम के साथ भी अपना जमहूरी प्रैक्टिस कर सके?
4: देखें, पहले इसके कि हम फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी जो है उसका आउटकम्स को देखेंगे, कितनी इफ़ेक्टिव वो पॉलिसी हो सकती है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस तरह का है। इस प्रोसेस में कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मुहरकात हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी। बहुत से स्कॉलर्स का ये ख्याल है कि इसमें आपके इलेक्टेड ऑफिशल्स के साथ साथ आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, आपका इवन के जो रोल ऑफ पर्सनैलिटीज़ है, यानी कि आपकी खारजा पॉलिसी को ट्रांसलेट करने के लिए जो आपका इलेक्टेड स्टाफ है या जो इलेक्टेड ऑफिशल्स हैं वो किस तरह से सोचते हैं, उनका सोचने का मायार क्या है। क्योंकि अब तो जो है वो 1960s के बाद ऐसा हुआ कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने और न्यूरोसाइंस ने ये देखना शुरू किया कि एक इंसान कितना रैशनल सोचता होता है और कितना इरैशनल सोचता है। क्योंकि रियासत की जो खारजा पॉलिसी है वो अफराद बना रहे होते हैं, फ़र्द जो हैं उसका हिस्सा होते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक फ़र्द जो है वो सोचता कैसे, उसके जहन का कितना हिस्सा जो है वो मंतकी लिहाज से सोचता होता है और कितना हिस्सा जो है वो इमोशनली सोचता होता है। सो दुनिया में हमारे पास कई ऐसे खारजा पॉलिसी के आउटकम्स हैं जिनमें प्रोसेस के दौरान ऐसे अफराद जो हैं वो शामिल थे जो कि जहनी लिहाज से ज़रा इमोशनली सोचते होते थे, या उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई थी। अगर इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ पुटिन, रशिया की अगर हम एग्जांपल लें, तो ही इज़ अ मिलिट्री मैन और वो मिलिट्री की तरह सोचता है। हाउ वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मिलिट्री मैन टू बिहेव डिप्लोमेटिकली? अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक इंसान है, उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, तो जब वो फॉरेन पॉलिसी बना रहा होगा तो हमेशा अग्रेसिव मींस को इस्तेमाल कर रहा होगा किसी भी मसले का हल निकालने के लिए। और एक बंदा है जिसने, या एक फर्द है जिसने जो है वो उसकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, उसने डिप्लोमेटिक वे से जो है इन चीज़ों को हल करना है, ये एक अहम फैक्टर हो सकता है। सो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा अहम होता है बैनुल अक्वामी ताल्लुकात में, बजाय इसके कि हम उसके आउटकम्स देखें।
3: जी तो सामिन, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की।

0: ये आवाज है लाहौर की,
1: लाहौर की।
0: ये आवाज है यूसीपी की,
1: यूसीपी की।
0: तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया।
2: प्रोग्राम फैकल्टी आर के साथ हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम करते हैं सर से कुछ मजीद सवालात और अपने आखिरी मरहल में भी दाखिल होते हैं। सर, जमहूरियत की हम बात कर रहे थे तो एक आम बंदा, यानी कि मैं भी एक आम बंदा हूँ, सुनने वाले भी हमारे काफ़ी आम लोग होंगे, तो सर ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मुल्क की जमहूरियत कहाँ पर खड़ी हुई है और दूसरे मुल्क की जमहूरियत किस मुकाम पर खड़ी हुई है?
3: देखें, पहला जो अहम पहलू है वो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ जो इलेक्शंस हैं वो कितने फ्री एंड फेयर हो रहे हैं और वो पीरियोडिक हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर उसमें इलेक्शंस के दौरान या ऐसा हो कि बेजाबतगियों के कुछ इल्ज़ाम आएं या कुछ ऐसा हो कि जिसमें लगे कि जी रिजीम जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर रही, 5 साल मुकम्मल नहीं हो रहे, तो ये एक ऐसा नेगेटिव इम्प्रेशन मिलता है जैसे जमहूरी प्रोसेस में कुछ अवामिल जो हैं वो ऐसे हैं जो कि इस प्रोसेस को मुकम्मल नहीं होने दे रहे। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोसेस किस लिहाज से जो है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम कर रहा है, इलेक्टोरल प्रोसेस। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक शहरी जो है वो अपने ख्यालात और अपने एक्सप्रेशन के लिहाज से कितना आज़ाद है अपनी राय का इजहार करने में। वो राय जो है वो नेगेटिव सेंस में नहीं हो सकती, वो किसी नेशनल सिक्योरिटी के मामले पे नहीं हो सकती। वो राय ये हो सकती है कि आप इनफरादी तौर पे किसी भी सोशल इशू के ऊपर, किसी भी पॉलिटिकल इशू के ऊपर किस तरह की राय रखते हैं बगैर किसी और के सेंटिमेंट्स को नुकसान पहुंचाए, आप उसका इजहार कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ होगी वो ये होगी कि आपके जो मुल्क है उसमें जो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि क्या कानून जो है वो सबको एक ही तरह से देख रहा है या कानून के लिए मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो मुख्तलिफ तरह का आप उनको प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो फिर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे। क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है कि रूल ऑफ लॉ होता है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। चौथा जो सबसे अहम आप वेरिएबल देख सकते हैं वो ये है कि आपका प्रेस जो है वो कितना आज़ाद है अपनी जो आ रहा है, क्योंकि प्रेस की बुनियादी जिम्मेदारी ये होती है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अगर तो वो ये कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और बीच में कोई ऐसी फोर्सेस नहीं है जो हायल हों, तो मुल्क जमहूरी होगा। अगर आपके इसके साथ साथ जो है वो मिलिट्री सबॉर्डिनेट टू इलेक्टेड ऑफिशल्स है और बहुत से इदारे जो हैं वो अपने डोमेन में रह के काम कर रहे हैं, तो मुल्क जमहूरी तस्वर होगा। अगर इनमें से कोई भी एक वेरिएबल है, जैसा कि इलेक्शंस जो हैं वो 10-10 साल नहीं हो रहे, तो फिर आप कहेंगे कि रिजीम जो है वो अथॉरिटेटिव है। जैसा कि किसी एक सियासी जमात का अगर रूल के ऊपर कब्जा है तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रूल जो है वो अथॉरिटेटिव है या टोटलिटेरियन रूल है जिसमें टोटल कंट्रोल जो है वो एक सियासी जमात के पास है। इसके अलावा जो है अगर इलेक्शंस में लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस नहीं मिल रहे, तो फिर ये इंप्रेशन जाएगा कि जैसे रिजीम जो है वो अथॉरिटेरियन है या डेमोक्रेटिक नहीं। सो इस तरह के और बहुत से वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए आप असेस कर सकते हैं कि कोई मुल्क जो है वो जमहूरी है या नहीं है।
2: जी सर, बिल्कुल ठीक। सर, अमूमन हमारे लोगों में ये तासर है कि लोग पॉलिटिक्स को अच्छा नहीं समझते। अगर कोई बच्चा पॉलिटिक्स पढ़ने का नाम लेता है तो कह देते हैं कि नहीं, ये हमारी डोमेन नहीं है, ये कुछ और लोगों की डोमेन है। तो सर, आपके ख्याल से हर एक बंदे के लिए या हर एक तबके के लोगों के लिए पॉलिटिक्स पढ़ना कितना ज़रूरी है?
3: देखें, हमें ये समझना पड़ेगा कि सियासत जो है वो एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक डिसिप्लिन की हैसियत से हमें पढ़नी चाहिए। उसकी वजूहात हो सकती हैं। हाँ, आपका मेरा इस बात के ऊपर डिबेट हो सकती है कि सियासत जो है वो एक नास्टी बिजनेस है, एक ऐसा काम है जो कि अमूमन तसव्वुर ये है कि वो अच्छा बिजनेस नहीं है और पॉलिटिशियंस जो हैं वो करप्ट होते हैं हर मुल्क में। तो हम इस फिनोमेनाज को क्यों पढ़ें, इन फिनोमेनाज को, और हम क्यों इन चीज़ों पर तवज्जो दें? लेकिन बात यह है कि बहुत से ऐसे फिनोमेनाज हैं जो कि इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं लेकिन फिर भी आप करते हैं। अगर हम मिसाल लें एक बायोलॉजी या बायोटेक पढ़ने वाले की, तो वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। अब बैक्टीरिया जो हैं वो जानलेवा भी होते हैं बाज़ दफ़ा, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि वो जानलेवा फेनोमेना है तो उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, उसको हम स्टडी नहीं कर सकते। इंसान को जो है वो हर तरह का नॉलेज जो है वो लेने की ज़रूरत है। और क्योंकि अवैल में ऐसा होता था कि इंसान जो है वो पॉलीमैथ होते थे, मतलब वो हर तरह का नॉलेज लेते थे, क्योंकि आप एक सियासी तौर पे ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं और आपका और रियासत का जो रिश्ता है वो शहरी का और स्टेट का है, तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री आपको पता होना चाहिए कि आपके राइट्स और ड्यूटीज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रियासत आपको देने की मुतहम्मिल हो सकती है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियासत बदले में आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की हैसियत से आप में सिविक सेंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी होनी चाहिए, स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होनी चाहिए कि आप जो है ना वो कानून की पासदारी को अपने लिए वाजिब समझें या फ़र्ज समझें, और साथ ही आपको कवानीन का पता भी होना चाहिए, आपको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, आपको सियासी जमातों के रोल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी में रह रहे हैं।
2: सर, यूसीपी की अगर हम बात करें तो यूसीपी अपना क्या रोल अदा कर रही है पॉलिटिक्स की स्टडी स्टूडेंट्स तक पहुंचाने में और किस तरह से पहुंचा रही है?
3: देखें, यूसीपी में पूरा एक इदारा जो है वो डिपार्टमेंट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर जो है वो इसी कोशिश में है कि तमाम ऐसे तलबा जो कि इंटरेस्ट रखते हैं बैनुल अक्वामी अमूर में या सियासत में, उनको 4 साल डिग्री कराई जाए जिसको बीएस ऑनर्स कहा जाता है। और साथ ही दो और पैरेलल प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसमें एमफिल इंटरनेशनल रिलेशंस है और पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस है कि आप एकेडमिकली किस तरह से जो बैनुल अक्वामी सियासत में जो है वो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वो तब्दीलियां किन मुहरकात की बेस पे हो रही हैं, उनमें क्या क्या पाकिस्तान का किरदार हो सकता है या एकेडमिक्स का या स्कॉलर्स का किरदार हो सकता है इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, इन सियासी जो तनाजुर में तब्दीलियां हो रही हैं इनको समझने में और इनके ऊपर बात करने में। तो यूसीपी का पूरा एक डिपार्टमेंट जो है वो इसी तगोदो में है, हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिक्स का डिपार्टमेंट है कि किस तरह से लोगों में सिविक सेंस डेवलप की जाए, उनमें बैनुल अक्वामी अमूर के बारे में आगाही जो है वो पैदा की जाए, और बहुत से ऐसे सियासी और समाजी मसाइल जो कि आज पाकिस्तान जो है वो फेस कर रहा है उनको समझे बगैर हम उनका हल नहीं निकाल सकते। सो मेरा ये ख्याल है कि यूसीपी का ये जो डिपार्टमेंट है ये इसी उसमें जहत में काम कर रहा है कि किस तरह से एक रिस्पॉन्सिबल शहरी जो है वो बनाया जा सकता है।
2: बहुत शुक्रिया सर, आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे इख्तिताम होता है। बहुत शुक्रिया आपका पाए, आपने बहुत कुछ सिखाया, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और उम्मीद है कि स्टूडियो से बाहर बैठे लोग जो कि सुन रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा।
3: थैंक यू सो मच। थैंक यू।
2: तो सामीन, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया। अल्लाह हाफिज।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

डिस्कस कि हमने किस किस पर्सनैलिटी को डिस्कस किया और उन पर्सनैलिटीज़ में मैंने क्या सीखा. और ना सिर्फ ये मैं डिस्कस करूँगी बल्कि मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मुझे उन लोगों के बारे में क्या क्या बातें नहीं पता थी जो अब मुझे पता हैं. तो बेसिकली एक होता है ना, एक आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं तो आपको एक रिविज़न, आपका रिविज़न वीक चलता है. तो ये बस आप समझ लें कि ये रिविज़न वीक ही है. आपने पूरा जो सेमेस्टर पढ़ लिया है फुल और अब आपके फ़ाइनल्स आने वाले हैं. और अब फाइनल से एक क्लास पहले हमेशा वो जो आपका एक रिमाइंडर होता है ना, एक रिविजन वीक होता है, बेसिकली वो चलेगा इस वक्त. तो इसलिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे उन लेजेंड्स को जिनको हम लोग डिस्कस करते आए हैं. खैर अब इसमें करते हैं, हम लोग एक म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं. और म्यूजिकल ब्रेक की भी खास बात यह है कि आज म्यूजिकल ब्रेक में सारे वही आर्टिस्ट चलेंगे जिनको मैंने पिछले शोज में डिस्कस किया है. उनको कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से मैंने उनको इन्फ्लुएंस किया है और उनके ही कुछ ना कुछ म्यूजिक गैलरी में से मैंने निकाले हैं और आप लोगों को ताकि रिमाइंडर मिलता जाए. चलते एक म्यूजिकल ब्रेक पे और उसके बाद वापस आएगा फातिमा अहमद को ज्वाइन कीजिएगा.

वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। और आज हम लोग जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग जो रिवीजन, जिस तरह था रिवीजन वीक, वैसा ही आज दिन है। आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कि हमने किस किस पर्सनालिटी को डिस्कस किया है आज तक एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। और बेसिकली इसका फॉर्मेट शुरू से यही रहा है कि हम लोग किसी लेजेंड, किसी ऐसी पर्सनालिटी को डिस्कस करते हैं जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होता है, जिसने पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से ऐसे मुकाम पर पहुंचाया होता है कि हम लोग जो बेसिकली जो यंगस्टर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। तो मैंने जो अपना पहला शो किया था, वो मैंने स्टार्ट किया था बैंड से, म्यूज़िकल बैंड से, और उस बैंड का नाम था नूरी। और बेसिकली ऑब्वियसली वो बैंड जो है वो एज सच एग्जिस्ट नहीं करता, दे डू हैव देयर सॉन्ग्स, एंड एज वी डिस्कस्ड इन दैट शो कि उनके अपकमिंग सॉन्ग्स भी थे उस पॉइंट पे। लेकिन हम लोग जो हैं बेसिकली उस वक्त हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उनकी लाइफ स्टोरी कैसी थी, उन्होंने क्या क्या बेसिकली किस तरह से चल फिर के और वो इस मुकाम तक पहुंचे कि उन्होंने अपना नाम बनाया। और फिर वही बात है कि इनकी जो लाइफ में से मोटिवेशन, एक कोट मैंने निकाली थी जो कि ऑब्वियसली व्हेन यू स्टडी अ स्पेसिफिक पर्सन देन यू गेट टू नो देयर लाइफ, एंड व्हेन यू गेट टू नो देयर लाइफ तो फिर यू कैन एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक मोटिवेशन फ्रॉम देयर लाइफ। तो मैंने वही किया और उनकी लाइफ में से मोटिवेशन मुझे ये मिली कि यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड टू मेक इट टू योर डेस्टिनेशन। इनकी जो बेसिकली लाइफ थी, आई रिमेंबर, क्योंकि वही बात है कि रिवीजन वीक मेरा भी है, मुझे भी याद होना चाहिए कि मैंने किस पर्सनालिटी को क्या डिस्कस किया और उनसे क्या सीखा। तो इनकी स्टोरी कुछ यूँ थी कि यू नो दे वर स्टडिंग इन अ वेरी रिकग्नाइज्ड कॉलेज, और दोनों में ये गुण था बिकॉज ऑफ देयर फैमिली कि वो गा सकते थे और वो इस म्यूज़िकल फील्ड में थे, तो वो घर में ही बजाते रहते थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रैक्टिस करते रहते थे। And there came a time when they knew कि you know they could make it in the industry। तो फिर उस specific मोड़ पर उन्होंने ये decision लिया कि उन्होंने एक academy join की, and फिर वहाँ से उन्होंने अपने आप को और refine किया, उन्होंने instruments में अपने आप को और refine किया, and with time उनको colleges में, अपने ही colleges में उनको opportunity मिली और वहाँ पर उन्होंने गाना शुरू किया और इस तरह उन्होंने अपना नाम बनाया। खैर ये I remember कि मेरा पहला show था और मैं कुछ break के बाद वापस आई थी because मैं इससे पहले विजन ऑफ कल्चर शो कर रही थी और फिर मैं ब्रेक में चली गई थी, और ब्रेक में आई डिड डिफरेंट स्टफ, लेकिन आई वाज इन डूइंग रेडियो, एंड आई रिमेंबर कि आई वाज वेरी एंशियस कि मुझे रेडियो शो करना है। तो इसलिए फिर आई केम बैक एंड आई यू नो आई स्टार्टेड डूइंग एक्सक्लूसिव लेजेंड्स इन जनवरी। तो बहुत मज़ा आया था कि मैं जब वापस आई थी सिटिंग इन द स्टूडियो, आई रिमेंबर इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग देन अगेन कि आई इन्जॉयड माई सेल्फ बेसिकली कमिंग बैक। खैर उसके बाद मैंने अगला शो भी, बिकॉज ये वीकली शो होता था, होता है बेसिकली, तो शो में अगला जो मेरा शो हुआ था वो राइट 7 डेज आफ्टर, और मैंने फॉर्मेट कुछ यूँ रखा था कि मैं एक म्यूज़िकल पर्सनालिटी को डिस्कस करती थी, एंड नेक्स्ट टाइम मैं किसी आर्टिस्ट, किसी एज इन के किसी एक्टर को डिस्कस करती थी। अब वो एक्टर जो है वो एक्ट्रेस भी हो सकती है और वो कोई मेल आर्टिस्ट भी हो सकता है। तो फिर मैंने शो किया था मरीना खान पे, और मरीना खान, आई रिमेंबर कि जब मैं शो फॉर्मेट्स बना रही थी, कि जब मैं अपना प्रपोजल बना रही थी कि मैंने ये शो करना है, तो तब ही मेरे जहन में बैठ गया था कि मैं किसी और आर्टिस्ट को डिस्कस करूँ ना करूँ, लेकिन मरीना खान को मैंने लाजमी करना है, बिकॉज शी हैज़ दैट पर्सनैलिटी, लाइक यू लुक एट हर एंड यू वॉन्ट टू मीट हर। आई डोंट नो रियल लाइफ में भी उतनी ही स्वीट और उतनी ही अच्छी हैं कि नहीं, लेकिन इट सीम्स लाइक शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। तो इसलिए आई रियली वॉन्टेड टू डिस्कस हर, और आई एक्चुअली इन्जॉयड डिस्कसिंग हर, वो इस वजह से क्योंकि बहुत मज़ा आया था मरीना खान की पर्सनैलिटी को और अच्छे तरीके से जानने का, बिकॉज शी इज़ अ ब्यूटिफुल लेडी, शी इज़ दैट होता है ना करिश्मा एक होता है, और एक आपके एक पर्सनैलिटी में एक वो अरोमा होता है कि यू लुक एट हर एंड यू योर like you know I want to be like her। तो definitely वो वाली feeling थी मरीना खान की, इसलिए मैंने definitely अपना second show जो है direct मरीना खान पर किया था। और उनकी story भी जो हमारे जो अच्छे as in के जो उन्होंने अभी तक अपना नाम बना के रखा हुआ है ना, उन legends का जो नाम है वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि उन सब ने start किया था अपना show PTV से या फिर अपना रेडियो पाकिस्तान से, basically उन्होंने start किया था। इसमें उनकी आवाज़ की भी खूबसूरती थी, और आवाज़ की खूबसूरती
کے ساتھ ساتھ وہی بات ہے کہ انہوں نے بالکل بیسک اسکریچ لیول سے کام کرنا شروع کیا تھا, جس کی وجہ سے وہ ایک ان میں ایک خاص بات تھی, ایک بہت خوبصورت اور ایک کانفیڈنس ہوتا ہے جو کسی اور میں نہیں ہوتا. تو وہ جو ہمارے جو سینئر آرٹسٹ ہیں جو بہت اچھے طریقے سے کرتے رہے ہیں شوز اور ابھی تک کر ہی جا رہے ہیں, اور مطلب کہ دے آر ناٹ going down at all, تو وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا جو بیس ہے, ان کی جو ہوتے ہیں نا آپ کے بنیاد خوبصورت جب پڑتی ہے تو پھر اوبیسلی اوپر اسٹرکچر بھی اچھا بنتا ہے. تو اس لیے ان کا بھی یہی حساب ہے, ان کی بنیاد اچھی بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دے آر اسٹل سروائیونگ. اور آئی ریممبر کہ اس شو میں مجھے کال آئی تھی فرام منڈی بھاؤدین, اور اٹ واز ویری شاکنگ فار می. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مطلب کہ آئی واز ویری شاکڈ کہ سڈنلی ایک تو کال آنا, وہ بھی سیکنڈ شو میں مجھے ڈائریکٹ کال آ گئی تھی, اور وہ بھی اتنی دور سے کال آنا, دور ایسے دور نہیں لیکن اٹ از دور کنسیڈرڈ فار می, اور کسی ایسے بندے مجھے جہاں سے میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ کوئی مجھے سن رہا ہوگا, وہیں پہ کوئی مجھے سن رہا تھا. تو اٹ واز اے ویری نائس فیلنگ. تو وہی بات ہے کہ سم فیلنگ آر ناٹ ٹو بی فرگیٹڈ. خیر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ میوزیکل بریک پہ چلتے ہیں, میوزیکل بریک کے بعد ہم لوگ واپس آئیں گے اور پھر آئی ول ڈسکس ان مور ڈیٹیل کہ ہم لوگوں نے اور کس کس پرسنالٹی کو ڈسکس کیا ہے. تو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCPA की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में। और आज जो है हम लोग रिविजन एपिसोड, एक रिविजन शो बेसिकली चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फ्रॉम डे वन, जहाँ से हमने शो स्टार्ट किया था वहाँ से लेके आज तक के जितने भी शोज डिस्कस किए हैं, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और हमेशा शो की एक, मैं वैसे एक बात बताऊं कि मैं पहले भी जब विजन ऑफ कल्चर्स करती थी और अब भी मैं जो एक्सक्लूसिव लेजेंड्स करती हूँ, उसमें भी मेरी हमेशा यही एक शिकायत रहती कि मुझे टाइम इतना नहीं मिलता। क्योंकि विजन ऑफ कल्चर्स में भी ये होता था कि मेरे पास इतना डाटा होता था, मैं और आरजे ईमान जो थी वो मेरे साथ होती थी, और हम लोग बस यही डिस्कस करते रहते थे कि हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा, हमने बातें बहुत ज़्यादा करनी है, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता था। और टाइम के बाद वही बात है कि ऐसे टाइम जाता था। उसी तरह अभी भी यही सूरत हाल है कि अभी भी मेरे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, मेरे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा करने को होती हैं, लेकिन हमेशा वही बात है कि देर कर देता हूँ मैं। लेकिन एक्चुअली नॉट देर कर देता हूँ, बल्कि द फैक्ट के टाइम ही इतना कम होता है। तो मतलब कि शो इतना होना चाहिए कि आपको 2 घंटे कम अज़ कम मिले और आप लोग बस बोलते रहो। खैर, दैट विल बी अ डे, आई एम श्योर कि वो दिन भी आएगा जब आई विल बी एबल टू डू अ 2 आवर शो। और उसमें भी मुझे लगता है मेरी यही शिकायत होगी कि यार मुझे और बोलना है। तो खैर, ये शिकायत जो है ये मेरे ख्याल से हर आरजे को सारी ज़िंदगी ही रहेगी कि मुझे वक्त कम मिलता है, मुझे बातें बोलने को ज़्यादा। खैर, हम लोगों ने जो 3rd शो किया था, उस दिन जो था वर्ल्ड रेडियो डे था, और वर्ल्ड रेडियो डे को हम लोगों ने ना सिर्फ सेलिब्रेट किया था, बल्कि मैंने जब शो किया था उसमें भी हम लोगों ने फैक्ट्स एंड फिगर्स को डिस्कस किया था, हाउ रेडियो हैज़ बीन इन्फ्लुएंशियल, और किस तरह रेडियो हमारी ज़िंदगी में बींग एन आर जे कितना इन्फ्लुएंसिंग है। और हमने उस दिन शो में डिस्कस किया था बैंड को, और बैंड का नाम था EP, मतलब कि एंटिटी पैरम। और मैं था इसको इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि एक्चुअली में ये जो शो है, म्यूज़िकल बैंड है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है, तो बिल्कुल टूट फूट के आवा है, एंड एवरीबॉडी इज़ वर्किंग ऑन देयर ओन राइट नाउ। लेकिन आई रिमेम्बर के इनके जो गाने थे, दे वर वेरी फन, दे वर वेरी रॉकी। तो खैर, हम लोग जो है वही मैं आपको डिस्कस कर रही थी कि एंटिटी पैराडाइम को हमने डिस्कस किया था, और मुझे पता था इनका नाम, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया था कि टू गेस के पीपल को EP जो वर्ड है, इसका फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता। तो वो मेरे लिए बहुत मज़े की बात थी कि, और अक्सर लोगों को एक्चुअली पता था, और मैं आप लोगों से जब भी गेस करवाती थी तो आप लोग इजीली गेस भी कर लिया करते थे। उसके बाद हम लोगों ने एक्टर पे, ज़ेबा बख्तियार पे शो किया था, एंड देन अगेन ज़ेबा बख्तियार इज़ वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़, जिनकी एक पर्सनैलिटी है, जिनकी खूबसूरत आवाज़ है, और उनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी के, शी इज़ ग्रोन अप, और बहुत मतलब कि माशाल्लाह उनकी एज हो गई हुई है, लेकिन उस एज के बावजूद शी इज़ सो यंग, एंड she has that personality जो उन्होंने अपने आप को maintain करके रखा हुआ है। तो वही बात है कि उस चीज़ को डिस्कस करने का बहुत मज़ा आया था। और हमने व्हाट्स ट्रेंडिंग में जो एक गेम आजकल बहुत इन है, PUBG, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि ये नाम उन्होंने क्यों रखा है, लेकिन खैर, हमने इस गेम को भी डिस्कस किया था, और हम लोगों ने हाउ इट हैज़ बैड इफेक्ट्स एंड हाउ एडिक्टिव इट इज़, और ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। लेकिन मेरा मैसेज ये नहीं था कि आप लोग छोड़ दें, मेरा मैसेज ये था कि अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, क्योंकि आई सॉ सम वीडियोज जिसमें लोग लाइक रैंडमली समझ रहे हैं कि इर्द गिर्द भी जो है वो गेम ही चल रही है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। और आई स्टिल सी पीपल एंड आई स्टिल हैव फ्रेंड्स जो अभी तक इस गेम को खेलते हैं, तो यू नो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट एक्चुअली। अब हम ऐसा करते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक पे चलते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर कि हमने और किस पर्सनैलिटी को डिस्कस किया। सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6।

0: Your voice, your choice. This is University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya. The best campus radio in the country.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप लोगों ने ज्वाइन किया है फातिमा अहमद को एक्सक्लूसिव लेजेंड्स में. आज हम लोग जो है डिस्कस करें कि हमने आज तक कितनी पर्सनालिटीज को और हमने किन किन लोगों पे शोज़ किए हैं और किन किन आर्टिस्ट को हम लोगों ने कवर किया है. और अभी मैं यही सोच रही थी कि मैंने अपनी जो फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर दो दो शोज़ किए हैं. दो दो शोज़ ये कि मैंने आई डिवाइडेड देयर डाटा इनटू टू शोज़, और जिसमें लाइक एक शो में हम लोगों ने उनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री दे दी और अगले शो में उनकी हमने अचीवमेंट्स को डिस्कस किया. और उन दो वो जो दो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने दो शोज़ किए थे, दैट इज़ लाइक फोर शोज़ बनते हैं. एक है उनमें अली ज़फ़र और एक है नुसरत फ़तेह अली खान. और आपने दोनों के अभी जो है म्यूज़िकल ब्रेक में उनके गाने सुन लिए, और अली ज़फ़र का भी आप लोगों ने सुना था चल दे लो मेरे, और अभी जो है आप लोगों ने नुसरत फ़तेह अली खान को सुना. और वही बात है कि कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिनको आप फ़ौरन नहीं वाइंड अप कर सकते, और उनकी सक्सेस स्टोरीज इतनी बड़ी और इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप उनको जो है ना वो चुटकियों में नहीं ख़त्म कर सकते. उसके अलावा हम लोगों ने फिर शो किया जल बैंड पे, और जल बैंड के लिए भी मैं इसलिए एक्साइटेड थी क्योंकि आई रिमेंबर कि जल बैंड जो है वो एक ऐसा उस वक्त अभी भी बल्कि उनके गाने बहुत ही ऐसे हैं कि जो आप सुन सकते हो आप थ्रू आउट योर लाइफ. उनके गाने बहुत एक मिडल एज जो है उनके वैसे गाने के आप थ्रू आउट ईयर्स आप उनके गाने जो है इन्जॉय कर सकते, क्योंकि उनके बहुत सॉफ्ट जॉनरा है. बेसिक दे आर पॉप म्यूज़िक बैंड लेकिन एक सॉफ्ट जॉनरा है उनका. उसके अलावा जब हम अली ज़फ़र को डिस्कस करते थे उन दोनों PSL चल रहा था, और आई रिमेंबर कि PSL को भी हम लोगों ने फुल डिस्कस किया था, किसका मैच किसके साथ हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है, किसके मतलब कि कौन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, कौन जो है वो बस ओके खेल रहा है. तो आई थिंक वो हम जो डिटेल में गए थे बिकॉज आई लव PSL myself. मैं और किसी क्रिकेट का फ़ैन हूँ ना हूँ, लेकिन मैं PSL को हमेशा फॉलो करती हूँ, बिकॉज देन अगेन यू हैव टू ऑलवेज प्रमोट योर कंट्री एंड योर पीपल देन एनी वन एल्स. हम लोगों ने शो किया था फिर एक एक्ट्रेस पे, वो है महनूर बलोच. और आई फील कि मेरा कुछ फेज इस तरह चल रहा है कि मैंने पहले फीमेल आर्टिस्ट को सब फीमेल आर्टिस्ट को डिस्कस कर लिया था एंड देन आई केम टू मेल आर्टिस्ट, क्योंकि अभी आगे आएंगे मेल आर्टिस्ट बहुत सारे. और महनूर बलोच जो हैं इनको हमने बेसिकली डिस्कस किया था. ये भी एक बहुत अच्छा शो था, एक बहुत मज़े का शो था, क्योंकि इसमें देन अगेन हमें महनूर बलोच की सीक्रेट टिप्स हमें पता चली थी कि वो हाउ इज़ शी सो यंग, और आई एक्चुअली शेयर्ड के वाई इज़ शी सो यंग. और अगर आप लोग को याद है तो वेल एंड गुड. खैर, उसके बाद हम लोगों ने शो किया था देन अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स और जिनको मैं अभी तक सुनती हूँ, मैं शायद अपनी सारी उम्र सुनती रहूँ, नाज़िया हसन को हमने डिस्कस किया था. और बेसिकली हमने उनको एज अ बैंड भी उनको साथ में डिस्कस कर लिया था. ज़ुहैब हसन के साथ जो उनका बैंड था, दोनों बहन भाई का जो बैंड था, हमने बेसिकली उनको भी डिस्कस किया था. हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने शो किया था आबिद अली पे, और आबिद अली द सीनियर एक्टर जिनकी आवाज़ बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है. और हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों को जब गेसिंग गेम करवाई थी, आई रिमेंबर कि हमारे जो एक लिसनर हैं आबिद अली बट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने कमेंट किया था, और मैंने आप लोगों को गेसिंग गेम में ही कहा था कि हमारे जो जिस पर्सनैलिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनका नाम जब वो कमेंट सेक्शन में भी है. तो दैट वॉज़ वेरी फन. आई रिमेंबर कि हाउ पीपल वर सो ईजीली उन्होंने फ़ौरन दौड़ के उसको गेस कर लिया था. खैर, उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्यूजन को, और फ्यूजन में हम लोगों ने ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ दे वर द वो थे ना ट्रेंड सेटर्स बेसिकली इन अ स्पेसिफिक जॉनरा, और उनके म्यूज़िक जो है वो देन अगेन बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे तरीके से उनको सुना जाता है और बहुत ही इन्जॉय किया जाता है. इस तरह करते हैं, अब हम लोग म्यूज़िकल ब्रेक पर चलते हैं, और म्यूज़िकल ब्रेक के बाद हम लोग वापस आएंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ थिंग्स वेंट फर्दर. सो स्टे ट्यून्ड टू FM 92.6 एंड वी विल बी राइट back.

0: यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया। यूसीपी की दुनिया।
1: 24/7 only on FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, UCP की दुनिया, FM 92.6।

www.ucp.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

fun, entertainment, news, knowledge 24/7 only on UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।